एक अखर दा निखेड़ा करना है। कई गुरसिख इत्थे अपमान पड़ जांदे ने, लेकिन है इत्थे

की पवित्र वाणी। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद कायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारियां श्लोकां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

कारण तावई मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होंदा, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तैनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, यह मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगती, जांदियां भी देर नहीं लगती। जे तैनू गुरु ने धन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु का धन्यवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़ता है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसन लग पे। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखन लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसन वाली केड़ी गल है? इह ते हसन वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखन लगे, हसन वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए, एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा बड़ा राजा सी, इंद्र जिसका नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण यह 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है। ते मैं हसदा ता हां, ऐ पलिया, तेनू तन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्यवाद करना चाहिदा है। नहीं तो जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है वह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बनाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है।
ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ

मेहता कालू जी राय बुलाड़ दे पटवारी सन। आख्या मेहता जी आपनू राय जी याद करते हैं, उस बन विच बैठे हैं ब्रिक हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन। उन्हें मेहता जी आए, राय जी ने आउंदे ही पूछया, मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया? मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया, 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया। आख्या मैं तां उस वेले नूं कोसदा हां, राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नूं श्राप देंदा हां कि तू सुख के पीला क्यों ना हो गया, क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी। राय जी जापदा गुरु नानक हुण नहीं आवेगा। आख्या इवें ना आखो, तू बेबे नानकी जी नूं खबर भेज। मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नूं खबर भेजी है सुल्तानपुरी, जापदा वो भी इत्थे आवेगी क्योंकि घर की हालत तो बहुत खराब है, 12 साल हो गए हन गुरु नानक नूं घरों गया ते घर तो घर नहीं है, खंडर बन चुके, क्योंकि जिस घर का चिराग 12 साल हो गए हो बार होवे, जिस माता का इको एक बच्चा इको एक लाल होवे ते ओ भी 12 साल हो गए होन गया होवे घरों ते कोई सुख स्नेहा ना होवे, उस मां का की हाल होवे। इत्थे माता त्रिपता ने रो रो के अपनियां अखां गवा दित्ती कि हे नानक कदों आवेगा, कदों आके अपनी सोहनी आवाज मेरे कन्ना विच पावेगा। इत्थे माता तृप्ता अरदास कर रही है, बेनती कर रही है कदों आवेगा बेटा, असी तेनू पछाणिया नहीं, बेबे नानकी ने तेनू पछाणिया कि तू रब है।

मैं आवांगा। आ वेखना घर दी की हालत हो गई, मां ने रो रो के अखां गवा दितियां तेरे प्यार। गुरु नानक पातशाह आए, आवाज दिती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया, ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा। गुरु नानक पातशाह ने अगां होके मां नूं मां दे गल ना लगे। माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां, लेकिन दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलियां तां की वेख्या, चौदवीं दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने। गुरु नानक पातशाह खड़े, आख्या बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੂਕ ਰਿਹਾ। नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठां, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदे, कदे इस पासे मुंह करके बैठे। सोचदा खबरे इत्थों ना आ जाऊं, फिर सोचदा खबरे दूजे पासियों ना आ जाऊं, मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रिया ते पिछों आवाज आई, राय जी असी आ गए। आए गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या, सामने गुरु नानक खड़ोता है, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ

उस पूर्ण जोत करके मल्ली ते गल साडे समझ आ जाएगी। क्योंकि इथों आवाज आउंदी भगत कबीर जी दा एक शब्द जिस अंदर वो ये आवाज दे रहे ने, आओ उस आवाज नूं आपां

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी, अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के, इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी, अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेनू शरीर मिलिया सी, उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाउना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिसके वास्ते ये इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

जगी और न यह महत्व में अवतारी उजागिर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथराज में अमृत नाम पियो एह मदत ते मत चुके रे मन पेद न जान बियो पर ताक्षर

सुन बेद बिरंत विचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभु दीन दयाल है संगत सृष्टि।

संतों की तरियोरे आदि पुरख पर तख लिखो अक्षर मत कितुरे प्रगत ज्योत जग मगे तेज पू मंडल छायो पारस परस परस परस गुरु

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असी अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होन तो बिना, मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हूं, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है, फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

0: जी महाराज, धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है। पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, तलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए? महाराज जी आखते हैं साडे घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं, नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए।
0: नाम त्याना ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्यादा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर वो पूजा नहीं। पूजा उदो होंगी है जदों किसी का नाम दिल च वस जाए, वो पूजा होंगी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है। कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असि नाम जप रहे हैं तो समझ लो असि पूजा कर रहे हैं। अगर असि रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम ते आइए, बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां के संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाने दे वास्ते लोग तीर्थां ते जाते हैं, पिलग्रिमेजेस ते जाते हैं, जिन्हां नूं होली प्लेसिस आख्या जाता है। इस देर सच है महाराज जी आखते हैं साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां पे सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी, और किसी गल गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनया, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं वो ये कहते हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गयो केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहते साडे घर सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं। नानक के घर केवल नाम, नानक के घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जिना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहते नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस, समा समाप्त है। आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा कि गुरु बाबा जी के घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम की छड़ी तो बिना चलण की कोशिश करते हैं वो गिटे गोडे जरूर तोड़ाणगे, वह गिरणगे, चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी के नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए, गाइए, फिर कीर्तन का थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों नु जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार नु अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगा नु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनों प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान के अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिए है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिए है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिए है। जो इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनों देखो कितनी है, वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनों चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

जिथे हो जाई वाहिगुरु कृपा करे वह सानू भी नजर आए साडिया भी अखा उस अकाल पुरख नू ही देखन उस रचनहार नू देखन। प्रेम नाल इस शब्द नू गाओ अते दिल चो अरदास करो महाराज जो आप जी नू दिसदा है वह सानू भी नजर आए। प्यार नाल गाओ प्रण समाप्ति।

गुरमुख जपिए लाए ध्याना। एक कीर्तन करना है, एक कीर्तन जपना है। जब कीर्तन कर रही हो ते दूसरा सुने ए कीर्तन करना है, पर कीर्तन कर दे हैं नाल नाल खुद सुन रहे है ए कीर्तन जपना है। कलयुग देच इस समय ईश्वर प्राप्ति दा ए मुख साधन है, प्रधान साधन है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। अगर ध्यान लाके सुनना हो जाए तो कीर्तन जपना होंदा है। कीर्तन दा करना, कीर्तन दा रूप बनना नहीं है, पर कीर्तन दा जपना कीर्तन दा रूप ही हो जाना है। और जिस दी कीर्ति है मनुख उस दे स्वभाव नु प्राप्त कर लेंदा है, उस दे गुणा नु प्राप्त कर लेंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने योग साधना नहीं साधी, वर्त दे च विश्वास नहीं रखिया, तीर्थां दे इशनान नु कोई महानता नहीं दित्ती। आपने सिर्फ कीर्तन कीता है और इतने प्राणा नाल कीता है, इतनी एकाग्रता नाल कीता है, कीर्तन जप बन गया, कीर्तन तप पड़ गया, कीर्तन बंदगी बन गया, कीर्तन ही परमात्मा दा रूप बन गया। भाई साहब भाई अरविंदर पाल सिंह उन्हां ने सतगुरां दी इस बाणी नूं बड़े मनोहर अंदाज विच गायन कीता है। सतगुरु बख्शिश करन ए गायन कीती होई गुरबाणी इस विच ध्यान जुड़े और ए कीर्तन जप बन जाए। कीर्तन जप बनता है, जप करने वाला प्रभु दा।

पावन बाणी का कीर्तन आप जी सुन रहे हो। कुछ चुनवे शब्द मैं थोड़ी सेवा पढ़ने हाजिर हो। गुरु गोविंद सिंह जी दस रहे कि मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं शस्त्र का खिलाड़ी हूं, शस्त्र का पुजारी है। मेरा जो वाहिगुरु है वो शस्त्र है और शस्त्र तो बिना मैनू होर किसी का आसरा नहीं। इसलिए मैनू यह भरोसा है जिसके कोल शस्त्र है और जिस दा शस्त्र के उत्ते पूरा कंट्रोल है, यानी पूरी आराधना जिसकी शस्त्र की, उसकी कदे भी हार नहीं हो सकती। आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। ये जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र नूं चलाना जानता है, उसकी जंग विच हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह होती है। यह गुरु गोबिंद सिंह का मुख भाव। और उन्होंने एक गल होर दसी, उन्होंने कहा मैं सिंघा नूं पंज ककार की रहत दिती है, ते रहत दे नाल पंज शस्त्र भी दिते हैं। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्होंने मुख वाक बाणी तुसीं श्रवण करो। गुरु साहिब कहिंदे

जलसे में बफाक है। बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तो छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया जो फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलाड़े होए बंदूकां लैके वह भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी वह भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल तो उन्हें रात ही खोले से डंडे इन्हें हाथ ही फड़ा दिए, वो डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असी डे सा कीर्तन कर बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हाँ जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आण के कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड्डो ते खड्डे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवदे साड़ देना, तिया तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलगण गल कर लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दिती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानूं बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी। मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ना हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकछ तुरंग स्पच्छ बटो करकार कृपाण कम पावेंगे, निक्षे जिम केवर परबते ता सौ दिवाले पावेंगे, पल पाल पया संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनया एक तुक, निक्षे जिम केवर परबते, केवर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हों जो फिर परबत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आ उन्हें फिर जो ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चान होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुक्के, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर हुआ, ए बाबे का छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली ते जकारे छड़ दे पज पै पज के पांच सत पिछे बचारे मेरे वर्गे वह भी मगन मगन भजे होने। जदों उन्हें वेख्या दुष्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वो 4,000 जो सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 50 सत्ता गोगे गोडे टुट गए है जी। जब भज उठे नाले ऐ वेखन वाले भजन तो फिर एक उठे खलो गए, इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हां, ना असी बुढ़े मारते हां, ना असी बच्चे मारते हां, ना असी भजदे मारते, असी भजदे नहीं मारते, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ नहीं तो असी इधर जाने जड़े आ आउंदे ने उन्हां नूं छड्ड के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे है जी। 12,000 दुष्ट ए सारे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्हों ने बदल सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4 बजे दीवान लगा रज गए होवोगे। श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह की कहने छंदरी बापू में हो

धरती दा ऐसा निर्मल जल जो पीतियां शरीर अरोग हो जांदा है, ते किसे धरती दा ऐसा कठोर जल भी हुंदा है जो अरोग शरीर नू नित दा रोगी बना देंदा है। आख्या वही नाम दोहां दा ही जल है, पर एक जल सुख रूप है एक दुख रूप है। ऐसे प्रकार संसार विच संगत भी दो प्रकार दी है, को संगत प्राप्त हो जाए तो जीवंदियां ही नरक बना देंदी है, सत संगत प्राप्त हो जाए तो प्रभु दे नाल मिलाप करा देंदी है। इसलिए आप जल दा दृष्टा

मरण लिखाए मंडल में आए सबना मरना आया विछोड़ा सबना हर जो जन्मे है हर जो बने है हर जो उपजे है उस हर एक ने मरना ता है जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए बाकी ये गल वखरी है ओ मौत जो आम लोका वास्ते जिवें कबीर जी का वचन सी जिह मरने सब जगत तरासिया जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी मौत तां पता नहीं कदों आउणी मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे जीण नहीं पई देंदी जिह मरने सब जगत तरासिया सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत जिहदा नां लैणा चंगा नहीं समझा जांदा चार बंदे बैठे होण कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर मौत दी गल माड़ी गल है मंदी गल है चंगी नहीं लगदी जीण दी गल कर मौत दी गल ना कर जिस नूं भाई मूले ने भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीना झूठ लेके दिता सी जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान किया सी मरदानिआं कोई तां समझ वाला बैठा है इत्थे सियालकोट विच जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है और है भी सच जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकते ने शक हो सकते ने शंके रह सकते ने गर्भ विच है जो इसका जन्म होवेगा जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी कोई पक्की गल नहीं है शंके वाली गल है जिसका जन्म हो गया है इस नूं कुछ उमरां प्राप्त हो सकेगी शंके वाली गल है ये बोल सकेगा ये तुर सकेगा शंके वाली गल है डर बनिया रहिंदा है पता नहीं चल सके ना चल सके सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं परिवार वाला बन सकेगा के नहीं कारोबार चल सकेगा के नहीं हर किस्म दे शंके हो सकणगे लेकिन एक गल परपक है हर एक जीव दे संबंध विच ये जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर मौत ना टल सकेगी हर जीव ते आवेगी पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है जो हर हालत च वापरना ही ये सच है ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओ झूठ है फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो झूठ दी करो मरण दी गल ना करो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े लै जाए जियो मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तों बच सकण दे ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा जो सच है जो वापरना है इस तों बंदा डरदा है कहिंदा इहदी गल ना करो जे मरने सब जगत तरासिया कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है मरण विच भी एक आनंद है कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरा है मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद भावे मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओ हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो आत्मक मौत बंदा मर जावे मरिया ही होवे एक तो मौत है मैं कमाउंदा मर गया मैं इथे उड़ीकदा मर गया मरिया ही होया बंदा जीवन शुरू ही नहीं होया क्योंकि जीण दा चज नहीं आया एक ओ मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जाती लेकिन एक मौत होर भी ओ है मनुख दी हौं दी मौत मैं मेरी दी मौत जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है इस पासे दी मौत हो जाती हौं दी मौत हो जाती बंदा इस मौत तो भी डरदा जिस नूं ए मरना आ गया ना उन्हूं धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया जिन्हूं धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया वो शरीर दी मौत बड़ी छोटी समझदा है बड़ी तुच्छ समझदा है जिन्हां नूं चज नाल जीना आ गया है सच्ची गल तां यह है कि चज नाल मरना भी उन्हां नूं आया कबीर जी कहिंदे ने सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया गुरु के शब्द द्वारा मैनूं मरण दा पता लग गया अब कैसे मरो मरण मन मानिया मरण ते चित करदा है हौं करके मरण नूं चित करदा है उंज भी जे मौत आवे जी आया मोए मरने का चाव है मरो ता हर के द्वार उधर जीवन शुरू हो जावे मर मर जाते जिन राम ना जानिया मरदे ता ओ ने मरदे ही रहिंदे ने ओ जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने जिन्हां नूं रब दा पता नहीं।

तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है, सो दर केहा सो घर केहा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन रहे, वो केड़ा दर है।

हे परमात्मा, मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता दा अर्थ दुखी है।

0: से पाऊं जो तेरे रंग रात से स्वामी दिल का जन्म मर दुख नासा तेरी बख्श ना मिटे कोई
1: सतगुरु का दिलासा जिस